0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: പാണ്ടിക്കാട് നിന്ന് ചിങ്കാരക്കോയാക്ക, ഇണ്ണിപ്പ സി കെ ആർ എന്നിവർ ആവശ്യപ്പെട്ട ഗാനമാണ് ഇനി. ചിത്രം നീലി സാലി, പാടിയത് മെഹബൂബ്, എ പി കോമള എന്നിവർ. ഗാനശില്പികൾ പി ഭാസ്കരൻ, കെ രാഘവൻ.

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: Volkswagen Virtus, Nala Varshigam Akhrushikigan.
4: Volkswagen Virtus Nodopam, 1.3 lakhs rupa varavil amadikinna, Pratheka Anukoolyangalum.
3: Phoenix Volkswagen Showroom Sandarshikku.
5: കൊരമ്പേൽ ഹോസ്പിറ്റൽ മഞ്ചേരി പാട്ടുപൊലിമ എന്നും രാവിലെ 7:55.
6: വേദനരഹിത പ്രസവത്തിന് കൊരമ്പേൽ ഹോസ്പിറ്റൽ, പാണ്ടിക്കാട് റോഡ്, മഞ്ചേരി. ഫോൺ 7510733334.
7: ഈ ഗാനം പാടിയത് കൊച്ചിൻ ഇബ്രാഹിം ആശാലത.

0: बता दूं, बहुत पहले दूरदर्शन पर इसका प्रसारण भी किया गया है। ठीक है मुस्कान?
1: हाँ
0: ठीक है तन्मया?
1: हाँ
0: तो चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं अपने लेसन की तरफ। आज का हमारा पाठ दो गौरैया, लेखक का नाम मुस्कान,
1: भीष्म सहानी।
0: लेखक का नाम तन्मया।
1: भीष्म सहानी।
0: अच्छा, तो कहानी की शुरुआत ऐसे होती है, घर में हम तीन ही व्यक्ति रहते हैं, माँ, पिताजी और मैं। तो लेखक क्या कहते हैं बच्चों? लेखक कहानी शुरू कर रहे हैं। ठीक है, भीष्म सहानी जी कहानी शुरू कर रहे हैं। कहानी शुरू करते हुए कहते हैं कि हमारे घर में हम लोग सिर्फ तीन लोग हैं। कितने लोग हैं मुस्कान?
1: तीन लोग।
0: कितने लोग हैं तन्मया?
1: तीन लोग।
0: अच्छा, कौन कौन है वे तीन लोग? माँ, पिताजी और मैं। एक माँ है, एक पिताजी है और उनका एक बच्चा है, मतलब न्यूक्लियर फैमिली, एकल परिवार। आजकल हमारी सोसाइटी में संयुक्त परिवार तो नहीं है, ज्वाइंट फैमिली तो नहीं है, सब लोग एकल परिवार में रहते हैं ना। तो उसी एकल परिवार की कहानी है ये, कि एक परिवार में एक माँ है, एक पिताजी है और एक उनका बेटा है। इतना समझ में आया मुस्कान और तन्मया?
1: हाँ
0: पर पिताजी कहते हैं कि ये घर सराय बना हुआ है। ओके, तो वो बेटा बोल रहा है, ये बेटा कहानी बता रहा है, ठीक है, उनका बेटा ये बात बोल रहा है कि ये जो मेरे पिताजी है, मेरे पिताजी बोलते हैं कि ये हमारा घर नहीं है, ये घर तो एक होटल है। तो सराय का मतलब समझ में आया मुस्कान आपको?
1: हाँ
0: सराय का मतलब,
1: होटल।
0: हाँ, सराय का मतलब
1: होटल।
0: होटल। इसको हम लॉज भी बोल सकते हैं, इसको आप अंग्रेजी में लॉज बोलते हो ना, उसको हम हिंदी में सराय बोलते हैं। थोड़ा होटल से थोड़ा छोटा, होटल थोड़ा बड़ा होता है ना। आजकल तो कितने होटल आप देखते होंगे, 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार, मगर ये होटल नहीं है, होटल से थोड़ा नीचे, इतना बड़ा भी नहीं है। तो अंग्रेजी में जिसको लॉज बोला जाता है उसे ही हम हिंदी में क्या बोलते हैं? सराय। तो पिताजी क्या बोलते हैं मुस्कान?
1: कि ये उनका घर नहीं बट एक सराय है।
0: हाँ, ओके, वेरी गुड, ऐसे ही ध्यान दीजिए। हम तो जैसे यहाँ मेहमान हैं, घर के मालिक तो कोई दूसरे ही हैं। ओके, हम तो सिर्फ मेहमान बनकर रह रहे हैं यहाँ पर। ये कौन बोल रहा है ये तन्मया? हम तो सिर्फ मेहमान बनकर रह रहे हैं, पिताजी बोल रहे हैं,
1: पिताजी। हाँ
0: है ना, कि हम तो सिर्फ यहाँ पर मेहमान। मेहमान का मतलब समझ में आया मुस्कान? मेहमान का मतलब क्या हुआ मुस्कान?
1: गेस्ट।
0: हाँ, जिसको आप लोग अंग्रेजी में गेस्ट बोलते हैं उसे हम हिंदी में मेहमान बोलते हैं। एक और वर्ड है हिंदी में, इसको बोलते हैं अतिथि। सुना है? अतिथि देवो भवा, सुना है? तो क्या बोलते हैं मेहमान को? अतिथि, है ना। तो पिताजी क्या बोलते हैं? पिताजी कहते हैं हम तो यहाँ मेहमान हैं, घर के मालिक तो कोई दूसरे ही हैं। हम तो सिर्फ घर में सिर्फ मेहमान के रूप में रहते हैं, इसके जो ओनर हैं, इस घर का जो मालिक है, वो तो कोई और है। तन्मया आप बोलो, हम तो यहाँ मेहमान है, घर के मालिक तो कोई दूसरे है। किसने कहा, ये कौन बोल रहा है?
1: पिताजी
0: हाँ, पिताजी किससे बोल रहे हैं मुस्कान?
1: अपने बेटे से।
0: अपने बेटे से बोल रहे हैं, वेरी गुड। आंगन में आम का पेड़ है, सिर्फ आम तौर पर जैसे हमारे घर होते हैं ना, वैसे ही उसी प्रकार के घर का वर्णन है यहाँ पर भी। तो वो लेखक क्या बोल रहे हैं? हमारे घर में क्या है? हमारे घर के आंगन में आम का पेड़ है। आंगन का मतलब समझते हैं आप लोग दोनों? मुस्कान समझती है? आंगन पूछा है, आंगन,
1: कोर्टयार्ड।
0: कोर्टयार्ड, यस करेक्ट।
1: ठीक
0: इसको
1: है।
0: अंग्रेजी में आप कोर्टयार्ड बोलते हैं, उसी को हम हिंदी में बोलते हैं आंगन। तो बच्चा क्या बोल रहा है? आंगन में आम का पेड़ है। तो अंग्रेजी में मैंने अभी बताया ना आंगन का मतलब,
1: कोर्टयार्ड।
0: हाँ, तो उनके आंगन में किसका पेड़ है बच्चों? उनके आंगन में आम का पेड़ है ना। आंगन में किसका पेड़ है तन्मया?
1: आम का पेड़।
0: अब आम का मतलब समझते हो ना?
1: हाँ
0: बोलो आम का मतलब।
1: मैंगो।
0: यस, जिसको आप मैंगो बोलते हो उसी को हम हिंदी में आम बोलते हैं। आपके घर में आम का पेड़ है?
1: नहीं
0: नहीं है।
1: नहीं
0: आपके घर में भी नहीं है तन्मया जी? मगर मेरे घर में आम का पेड़ है, और मेरे घर के पड़ोस में भी, अभी भी मैं जहाँ रहती हूँ ना, वहां पर मेरे घर के पड़ोस में बहुत सारे आम के पेड़ है। ठीक है, इतना समझ में आया आप दोनों को?
1: हाँ
0: चलिए
1: समझ में।
0: अब आगे पढ़ते हैं। तरह तरह के पक्षी उस पर डेरा डाले हुए हैं। आम का जो पेड़ है, आम के उस पेड़ पर तरह तरह के पक्षी रहते हैं, तो डेरा डाले हुए मतलब रहना। ओके, डेरा डालकर मतलब अपना घर बनाकर रहना। तो उस आम के पेड़ के ऊपर किसने अपना घर बनाया है तन्मया?
1: चिड़िया।
0: चिड़िया ने। चिड़िया को और क्या बोलते हैं? पक्षियों
1: पक्षी।
0: ने। ओके, तो तरह तरह के पक्षियों ने उस आम के पेड़ के ऊपर डेरा डालकर रखा है, मतलब तरह तरह के पक्षी क्या कर रहे हैं बच्चों? उस आम के पेड़ के ऊपर रहते हैं। सिर्फ एक पक्षी नहीं, वेराइटीज ऑफ बर्ड, वेयर दे आर स्टेइंग,
1: आम
0: पेड़
1: के
0: में,
1: पेड़ पर।
0: आम के पेड़ पर। जो भी पक्षी पहाड़ियों घाटियों पर से उड़ता हुआ दिल्ली पहुंचता है, पिताजी कहते हैं वही सीधा हमारे घर पहुंच जाता है। ओके, जो भी पक्षी पहाड़ियों से घाटियों से उड़ता हुआ दिल्ली पहुंचता है ना, तो पिताजी क्या बोलते हैं? जो भी पक्षी उड़ उड़ कर आते हैं ना, वो एकदम सीधे हमारे घर में आकर बैठ जाते हैं, सीधे हमारे घर के यहाँ पर उनकी यात्रा रुक जाती है। ओके, आपको मालूम है कि दूर दूर से उड़कर आने वाले बहुत सारे पक्षी हैं ना। तो पिताजी क्या बोलते हैं, जो दूर दूर से पक्षी उड़कर दिल्ली आते हैं ना, वो दिल्ली

0: एक बार सीधे हमारे घर के ऊपर आ जाते, तो वही सीधा हमारे घर पहुंच जाता है जैसे हमारे घर का पता लिखवा कर लाया हो। वो कैसे सीधे हमारे घर पहुंच जाते हैं? जैसे उन्हें हमारे घर का एड्रेस उन्हें मालूम हो। तो पता का मतलब
1: एड्रेस।
0: एड्रेस। ओके, तो ये पक्षी जो भी सीधे उड़कर आते हैं, ये सब पिताजी बोल रहे हैं, ये जितने भी पक्षी कहीं कहीं से दूर से पहाड़ियों से घाटियों से उड़कर आते हैं, वो सीधे हमारे घर पर पहुंच जाते हैं जैसे कि उनको हमारे घर का एड्रेस मालूम है ना। है जैसे कभी यहाँ तो कभी तोते पहुंच जाते हैं, तो कभी कौवे, और कभी कभी तरह तरह की गौरैया। कभी कभी तोते आते हैं उस आम के पेड़ के ऊपर, कभी कभी कौवे आते हैं, और कभी कभी बहुत ही तरह तरह की मिस वेराइटीज ऑफ स्पैरोस, गौरैया। तो गौरैया को हम अंग्रेजी में जो हम स्पैरोस बोलते हैं ना, उसी स्पैरोस को हिंदी में हम बोलते हैं गौरैया, जो हमारे पाठ का नाम है ना। समझ में आया हो? गौरैया का मतलब
1: स्पैरो।
0: कॉमन बर्ड, जो हम अपने घर के आसपास देखते हैं, राइट। आम पक्षी, आम चिड़िया। आम चिड़िया का नाम आपको मालूम है? कॉमन पक्षियों के नाम मालूम है आपको? बोलो किसी भी एक कॉमन पक्षी का नाम बताइए।
1: कौवा,
0: कहुआ, वेरी गुड। किसी भी कॉमन पक्षी का नाम बताइए।
1: कबूतर।
0: कबूतर, वेरी गुड। तो ये सब हमारे कॉमन पक्षी हैं। कॉमन पक्षी किसको बोलते हैं बच्चों? जो हम अपने घर के आसपास हम देखते रहते, उसे बोलते कॉमन, आम पक्षी। तो गौरैया भी एक आम पक्षी है। तो इसीलिए पिताजी क्या कहते हैं कि आम के पेड़ पर तोते भी रहते हैं, कौवे भी रहते हैं, और कभी कभी गौरैया भी आकर रहती है। कितना अच्छा है ना। इमेजिनेशन करके देखो, आपके घर में आम का पेड़ है, और आम के पेड़ के ऊपर तरह तरह के पक्षी आते हैं, है ना। तो हम तो सिर्फ शहरी जीवन में रहते हैं ना, हमें ग्रामीण जीवन के बारे में हमें कुछ मालूम नहीं है ना। आजकल ग्रामीण जीवन बहुत अच्छा है बच्चों, जहाँ पर चारों तरफ हरियाली रहती है और एकदम शांति। मगर अभी जो इस कहानी में जो पिताजी है ना, उनको शांति से ज्यादा उतना लगाव नहीं है। ओके, अभी हम देखेंगे आगे कि क्या होता है। ऐसा शोर मचता है कि कानों के पर्दे फट जाएं। पिताजी बोल रहे, ये सारी चिड़ियां, ये सारे पक्षी आम के पेड़ के ऊपर आ जाते हैं और जोर जोर से चिल्लाते हैं, इतना चिल्लाते हैं, इतना बात करते हैं। मगर पिताजी को कैसा लग रहा है? पिताजी को लग रहा है कि ये लोग बहुत बात करते, इतना बात करते कि मेरे कान के पर्दे फट जाते हैं। ओके, पर लोग कहते हैं कि पक्षी गा रहे हैं, पर दूसरे लोग जो ये देख रहे हैं, ओके, हमारे पड़ोस में जो लोग हैं, हमारे नेबरहुड जो हैं, उन लोग क्या बोलते हैं? उन लोग बोलते हैं पक्षी तो गा रहे हैं, पक्षी बात नहीं कर रहे, आवाज नहीं कर रहे, ये पक्षी तो गा रहे। कितना अच्छा है आपका घर, देखिए आपके घर में आम का पेड़ है, आम के पेड़ के ऊपर तरह तरह के पक्षी हैं, पक्षी अच्छे से गाना गा रहे हैं, और आप कहते हैं कि कान के पर्दे फट रहे हैं ना। पक्षियों की बातचीत किसी किसी को अच्छी लगती है, किसी किसी को अच्छी नहीं लगती। तो पिताजी भी उनमें से एक है जिन्हें पसंद नहीं है पक्षियों का गाना। आपको पसंद है पक्षियों का गाना?
1: हाँ, पसंद है।
0: आपने किसी पक्षी की आवाज सुनी है अपने घर के आसपास?
1: हाँ, मैंने एक बार सुनी है,
0: किसकी?
1: कोयल।
0: कोयल की। कैसे बोलती है कोयल? कुहू कुहू बोलती है ना,
1: हाँ,
0: तो बोलो ना, कुहू कुहू।
1: कुहू कुहू।
0: हाँ ठीक है, तो ये पक्षी गा रहे हैं। लेखक क्या बोल रहे हैं? लेखक बोल रहे पिताजी के माध्यम से कि ये जो पक्षी हैं, पक्षी इतना चिल्लाते हैं आम के पेड़ के ऊपर कि मेरे कान के पर्दे फट जाते हैं, और लोग क्या बोलते हैं?
1: क्यों गा रहे हैं?
0: हाँ, कौन गा रहे हैं?
1: पक्षी गा रहे हैं।
0: अच्छा, घर के अंदर भी यही हाल है, 20 ईयर तो चूहे बसते हैं। ओके, पिताजी अब इन सब लोगों को देख देख कर परेशान हो गए। पिताजी पिताजी क्या बोल रहे हैं? आम के पेड़ के ऊपर पक्षी गाना गाते हैं, और घर के अंदर देखो, ये भगवान, घर के अंदर 20 20 चूहे हैं। आपके घर में चूहे हैं? नहीं है।
1: नहीं नहीं
0: नहीं हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को चूहे से डर लगता है ना, तो हम लोग चूहों के लिए क्या करते हैं, दवाई रख देते हैं ना। मगर इन्होंने अभी तक दवाई नहीं रखी है, ये अब सिर्फ बता रहे हैं कि उनके घर में और कौन कौन रहता है। देखा जाए तो बच्चों, ये हमारा जो प्लैनेट है ना, जिसको हम पृथ्वी बोलते हैं, ये क्या सिर्फ हमारी है?
1: नहीं
0: और जितने भी जीव जंतु है ना, कभी तो अधिकार है इस प्लैनेट के ऊपर, इस ग्रह के ऊपर, है ना, पक्षियों के ऊपर, अपने वातावरण के ऊपर हमें दया रखनी चाहिए। तो वातावरण को स्वच्छ करने के लिए आप लोग कुछ कर सकते हो? क्या करोगे आप? अगर मैं बोलूं आपको अपना वातावरण स्वच्छ करना है, तो सबसे पहले आप कहाँ से प्रारंभ करोगे?
1: प्लास्टिक वेस्ट।
0: प्लास्टिक वेस्ट, है ना। आप वातावरण को शुद्ध करने के लिए और आप क्या कर सकते हो तन्मया?
1: जैसे कि रास्तों में कूड़े नहीं।
0: हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छे। ओके, तो इसका मतलब क्या है? मैंने ऐसा क्यों पूछा कि आपके अंदर ये भावना होनी चाहिए कि ये वातावरण हमारा है, इस वातावरण में हम सांस ले रहे हैं। अगर हम इस वातावरण को गंदा रखेंगे तो फिर क्या होगा? ये जो पक्षी हैं बच्चों, मालूम है ये पक्षी हमारे वातावरण को स्वच्छ रखते हैं, पर हमें लगता है तो ये जो वातावरण खराब कर रहे हैं लोग, नहीं, ये हमारे वातावरण को स्वच्छ रखते हैं। मगर इस कहानी में जो पिताजी हैं, वो इन पक्षियों से, जानवरों से परेशान हो चुके हैं, इसलिए वो बोल रहे हैं मेरे घर के अंदर मैं ही नहीं रहता हूँ, मेरे घर के अंदर और भी बहुत सारे लोग रहते हैं, उसमें से 20 चूहे हैं, रात भर एक कमरे से दूसरे कमरे में भागते रहते हैं। ये चूहे क्या करते हैं मुस्कान?
1: दिन भर भागते रहते हैं।
0: ठीक है, इसकी आवाज सुनाई देती है चूहों की तन्मया।
1: हाँ।

0: ओके, भागने की आवाज सुनाई देती है ना, इसलिए तो लेखक बोल रहे हैं कि मेरे को कि 20 ये चूहे हैं और ये दिन भर भागते रहते हैं। ओके, कहां से? एक कमरे से
1: दूसरे
0: कमरे
1: कमरे।
0: धमा वे धमा चौकड़ी मचती है कि हम लोग ठीक तरह से सो भी नहीं सकते। धमा चौकड़ी का मतलब उछल कूद करना, शोर करना, वेरी नॉइजी। चूहों और मनुष्य में फर्क होता है, मगर यहाँ पर क्या बोल रहे हैं लेखक, क्या बोल रहे हैं ये चूहे भी बहुत शोर करते हैं, बहुत नॉइजी हैं ये चूहे, दिन भर उछल कूद करते रहते हैं, इतना उछल कूद करते हैं रात में भी कि हम रात में सो ही नहीं पाते हैं, है ना। चूहे ऐसे होते हैं। आपके घर में चूहे नहीं है ना, इसलिए आपको नहीं मालूम। मेरे घर में ना एक बार आया था, इसलिए मेरे को मालूम है। इस लेसन के जो पिताजी हैं वो क्या बोलते हैं, ये चूहे क्या करते हैं, रात भर हमें तंग करते हैं, हमें ठीक से सोने नहीं देते हैं, उछल कूद करते हैं, एक कमरे से दूसरे कमरे, दूसरे कमरे से पहले कमरे, सारा दिन सारी रात धमा चौकड़ी मचाए रखते हैं। कौन धमा चौकड़ी मचाए रखता है?
1: चूहे,
0: हाँ, एक चूहा नहीं, कितने चूहे हैं?
1: 20 चूहे।
0: हाँ, 20 चूहे। हम लोग ठीक तरह से सो भी नहीं पाते, बर्तन गिरते हैं, डिब्बे खुलते हैं, प्याले टूटते हैं ना, बर्तन गिरने की आवाज सुनाई देती है ना। जब चूहे इधर से उधर भागते हैं तो हमारे किचन के अंदर, रसोई घर के अंदर जो बर्तन होते हैं वो नीचे गिर जाते, तो उसकी आवाज सुनाई देती है ना। डिब्बे, डिब्बे मतलब बॉक्स। आपके घर में ये जरूरी नहीं है कि चूहे रसोई घर में ही आएंगे, वो कहीं भी जा सकते हैं, हमारे घर के अंदर कहीं भी जा सकते हैं। और घर के अंदर जो चीजें होती है ना, और जब वो मूव करते हैं तो वो क्या होती है, वो चीजें नीचे गिर जाती हैं, तो उसकी आवाज आती है, तो हमको पता चल जाता है कि हाँ यहाँ पर कोई चूहा है। इसलिए पिताजी को भी मालूम है कि यहाँ पर चूहे हैं। क्यों? क्योंकि बर्तन गिरते हैं, डिब्बे खुल जाते हैं, प्याले टूटते हैं। प्याले मतलब कप, जिसमें हम चाय पीते हैं ना, हिंदी में उसको बोलते हैं प्याला, ठीक है। तो बर्तन गिरते हैं, डिब्बे खुलते हैं, प्याले टूटते हैं। एक चूहा अंगीठी के पीछे बैठना पसंद करता है। अंगीठी का मतलब फायर पॉट, अंगीठी का मतलब बच्चों फायर पॉट। तो अच्छा बच्चों, आज के लिए इतना ही।

0: ഇനി അല്പസമയത്തിനകം ഒഡീഷയിലെ പുരി ജഗന്നാഥ ക്ഷേത്രത്തിൽ ഇന്ന് നടന്ന രഥയാത്രയുടെ റിപ്പോർട്ട് കേൾക്കാം. ഡൽഹിയിലെ
1: ആകാശവാണി പ്രസ്തുത ഹെ ആജ് മഹാപ്രഭു ജഗന്നാഥ് ജി കെ ധാം ഒഡീഷ കെ പാവൻ ക്ഷേത്ര പുരി മേ ആയോജിത് രഥയാത്ര പർ സമയകിത് റേഡിയോ റിപ്പോർട്ട്. यह घंटनाद, यह कोलाहल, यह जयघोष किसी के आगमन की सूचना देता है. किसका आगमन हो रहा है? कौन है ऐसा जिसके आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं?
2: समय की रेडियो रिपोर्ट. यह घंटनाद, यह कोलाहल, यह जयघोष किसी के आगमन की सूचना देता है. किसका आगमन हो रहा है? कौन है ऐसा जिसके आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं लाखों श्रद्धालु और भक्तजन? कोलाहल के बीच से जो एक स्वर उभर कर आ रहा है वह है जय जगन्नाथ. आज यहां उपस्थित सभी भक्तजनों के कंठ में यह एक ही ध्वनि है, जय जगन्नाथ. प्राचीन उत्कल प्रदेश जो वर्तमान में ओडिशा के नाम से जाना जाता है उसका एक स्वतंत्र परिचय है, वह है प्रभु जगन्नाथ. विश्वभर में यह प्रदेश जगन्नाथ जी की भूमि के नाम से प्रसिद्ध है क्योंकि ओडिशा के समुद्री तट स्थित पुरी शहर में विराजते हैं भगवान जगन्नाथ अपने अग्रज भगवान बलभद्र तथा बहन देवी सुभद्रा जी के साथ. कहा जाता है कि यह उनका मानवीय लीला क्षेत्र है, अर्थात प्रभु यहां वह सब कुछ करते हैं जो एक साधारण मनुष्य अपने जीवन में करता है. प्रभु के सारे विधि विधान मानवीय दिनचर्या के समान हैं. सदियों से चली आ रही परंपरा के अनुसार सभी विधियां संपन्न की जाती हैं. उसी परंपरा का एक अंश है भगवान जगन्नाथ जी की वार्षिक रथ यात्रा. शास्त्रानुसार रानी गुंडीचा को दिए गए वचन को निभाने के लिए भगवान वर्ष में एक बार गुंडीचा मंदिर की यात्रा करते हैं. वहीं एक मान्यता और भी है कि मंदिर में प्रवेश न कर पाने वाले अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए, उन पर अपनी कृपा दृष्टि बरसाने के लिए भगवान अपने मूल स्वरूप में ही मंदिर से बाहर आ जाते हैं. शास्त्र पुराणों में किए गए वर्णन के अनुसार भगवान की इस रथ यात्रा का विशेष महत्व है. कहा गया है कि रथारूढ़ भगवान के दर्शन से जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिलती है. यही कारण है कि रथ यात्रा के दौरान प्रभु के दर्शन करने हेतु विश्व के कोने कोने से श्रद्धालु भक्तजन पुरी आ पहुंचते हैं. आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि के दिन भगवान की रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है.

रथ यात्रा का आयोजन भले ही आषाढ़ शुक्ल द्वितीया के दिन होता हो, परंतु इस महोत्सव की तैयारियां बहुत पहले ही शुरू हो जाती हैं। भगवान की यात्रा के लिए हर वर्ष 3 रथ नए सिरे से बनाए जाते हैं। इसके लिए काष्ठ संग्रह का कार्य वसंत पंचमी के पावन दिन से शुरू होता है। रथ निर्माण का कार्य भगवान के विशेष सेवक वंशानुक्रमिक रूप से करते हैं। रथ निर्माण एक चरणबद्ध कार्यक्रम है। रामनवमी से लकड़ियों को चीरने का कार्य शुरू होता है। अक्षय तृतीया के पवित्र दिन से प्रारंभ होता है रथ निर्माण का कार्य। फिर नियमित समय व्यवधान से रथों के पहियों तथा अन्य हिस्सों को प्रस्तुत किया जाता है। रथों के निर्माण में विश्वकर्मा, लोहार,

दर्जी, चित्रकार आदि सेवकों की बड़ी भूमिका होती है। उधर अक्षय तृतीया से आरंभ होती है चंदन यात्रा। इस दौरान विग्रहों को नरेंद्र सरोवर में नौका विहार कराया जाता है। स्नान पूर्णिमा के दिन भगवान के विग्रहों को रत्न वेदी से स्नान मंडप लाया जाता है। स्नान के पश्चात प्रभु को गज वेश में सजाया जाता है। अत्यधिक स्नान से प्रभु ज्वर से पीड़ित होते हैं, तब 15 दिनों के लिए उन्हें एकांतवास में रखकर उनका उपचार किया जाता है। आषाढ़ शुक्ल द्वितीया के पूर्व दिवस अर्थात प्रतिपदा के दिन भगवान नव यौवन वेश में भक्तों को दर्शन देते हैं। रथ यात्रा का मुख्य महोत्सव पुरी में आयोजित होता है, जिसमें भगवान मुख्य मंदिर से निकलकर गुंडीचा मंदिर की यात्रा करते हैं। वहां एक सप्ताह के अवस्थान के पश्चात पुनः रथारूढ़ होकर वापस मुख्य मंदिर में लाए जाते हैं, जिसे स्थानीय भाषा में बाहुड़ा यात्रा कहा जाता है। आज आषाढ़ शुक्ल द्वितीया के पावन दिवस के अवसर पर पुरी में इस महोत्सव का आयोजन किया गया। मौसम विभाग द्वारा पुरी तथा आसपास के कई जिलों में मध्यम से भारी वर्षा के पूर्वानुमान की परवाह किए बिना लाखों की संख्या में भक्तजन पुरी पहुंचे थे। मन में जहां दृढ़ भक्तिभाव होता है, वहां मनुष्य हर विघ्न को पार कर जाता है। इसी बात का प्रत्यक्ष प्रमाण था यहां उमड़ा भारी जनसमूह। श्री मंदिर के नाम से जाने जाने वाले मुख्य मंदिर को फूलों से सजाया गया था। मंदिर के सिंह द्वार के सामने तैयार खड़े थे 3 सुसज्जित रथ। लाल और हरे रंग का भगवान बलभद्र जी का रथ ताल ध्वज, बीच में लाल और काले रंग के वस्त्रों से सज्जित देवी सुभद्रा जी का रथ देवदलन, और द्वार के समीप था लाल और पीले रंगों के वस्त्रों से सज्जित भगवान जगन्नाथ जी का रथ नंदीघोष। मार्ग पर आकी गई रंगोलियां सभी का मन मोह रही थी। आसमान में छाए बादल बीच बीच में बरस पड़ते थे, परंतु यह बारिश भक्तों के उत्साह में किसी प्रकार की कमी ना ला सकी। बारिश होने के समय भक्तों के द्वारा उपयोग में लाए गए रंगीन छाते एक अद्भुत दृश्य प्रदान कर रहे थे। कोई भजन कर रहा था तो कोई कीर्तन, तो कोई अपनी नृत्य कला अथवा रण कौशल का प्रदर्शन कर भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहा था।

एक विधि के अनुसार भगवान के रथों पर ध्वज तथा कलश की स्थापना की गई। ब्राह्मणों द्वारा रथ प्रतिष्ठा की विधि संपन्न होने के बाद शुरू हुई पहुंडी की विधि। पहुंडी का शाब्दिक अर्थ है धीरे धीरे कदम दर कदम आगे बढ़ना। इस विधि के अंतर्गत यहाँ दंड रूपी भगवान सुदर्शन और देवी सुभद्रा को भक्तजन बिना भूमि को स्पर्श कराए कंधों पर उठाकर मंदिर के रत्न सिंहासन से रथों तक लाते हैं। वहीं भगवान बलभद्र तथा जगन्नाथ जी को एक एक कदम बढ़ाते हुए लाया जाता है। क्रमानुसार सुदर्शन जी, भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा तथा जगन्नाथ जी की पहुंडी विधि संपन्न हुई। भगवान के आयुध सुदर्शन जी को देवी सुभद्रा जी के रथ पर स्थापित किया गया। टाहिया कहे जाने वाले फूलों से सजे विशाल मुकुट से सज्जित भगवान की शोभा अवर्णनीय थी। भगवान की इस आकर्षक विधि का दर्शन करने के लिए आए भक्तों से मुख्य मार्ग मानो पूर्ण रूप से भरा हुआ था। भगवान के रथारूढ़ होने के साथ साथ यात्रा के लिए उनकी आवश्यक सामग्रियों को भी रथों पर रखा गया। प्रभु के रथारूढ़

0: होने के पश्चात परंपरा के अनुसार पुरी गोवर्धन मठ के शंकराचार्य ने अपने शिष्यों के साथ आकर भगवान के दर्शन किए। अगला अनुष्ठान था छेरा पहरा। परंपरा के अनुसार इस विधि में भगवान के प्रथम सेवक कहे जाने वाले पुरी के गजपति महाराज स्वयं अपने महल से एक पालकी पर सवार होकर आते हैं और अपने हाथ में सुवर्ण मार्जनी लेकर रथों की सफाई का कार्य करते हैं। यह विधि इस बात को दर्शाती है कि भगवान के आगे राजा और रंक में कोई भेद नहीं है, भगवान के आगे सभी समान हैं। सफेद राजसी पोशाक में गजपति महाराज लाल रंग की पालकी पर सवार होकर महल से रथों तक पधारे, फिर बारी बारी से एक एक रथों पर महाराजा ने सेवकों द्वारा डाले गए फूलों की प्रतीकात्मक रूप से सफाई की। छेरा पहरा विधि को संपन्न कर महाराज ने भगवान की आरती की और महल की ओर प्रस्थान किया। अब बारी थी रथों पर चढ़ने के लिए लगाई गई सीढ़ियों को खोलने की। सीढ़ियों को खोलने के पश्चात रथों से सारथी अश्वों तथा रज्जुओं को संयुक्त किया गया। अब वह क्षण आ पहुंचा था जिसका हर भक्त को बड़ी बेसब्री से इंतजार था। रथों को खींचने का समय हो गया था। बड़े ही उत्साह के साथ भक्तजन पहले बलभद्र जी, फिर देवी सुभद्रा और अंत में भगवान जगन्नाथ जी का रथ खींचते हैं। सूर्यास्त तक रथों को खींचा जाता है। गुंडीचा मंदिर तक न पहुंचने की स्थिति में रथों को अगले दिन सूर्योदय के पश्चात फिर से खींचा जाता है। इतने विशाल आयोजन में कानून व्यवस्था बनाए रखने, सभी आवश्यक सेवाओं को सुगमता से उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार के विभिन्न विभाग, स्थानीय इकाइयों तथा स्वयं सेवकों की भूमिका सराहनीय रही। पुरी न आ पाने वाले श्रद्धालुओं को रथ यात्रा का प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान कराने के लिए आकाशवाणी ने क्षेत्रीय भाषा के साथ साथ अंग्रेजी और हिंदी में आंखों देखा हाल सुनाने का प्रबंध किया था।
1: ये तीनों रथ पूरी तरह से बरसात में भीगे हैं, लाखों श्रद्धालु, बरसात लगातार जारी है फिर भी उन्हें इसकी परवाह नहीं है। उनके आगे उनके आराध्य देव जगत के नाथ प्रभु जगन्नाथ विराजमान हैं। वो स्वयं भीग कर रत्न सिंहासन छोड़कर जब रथ रूपी मंदिर में काष्ठ सिंहासन पर विराजमान होने के लिए आए हैं और भक्तों को अपना दर्शन देने के लिए आए हैं, तो उनके आगे सामान्य भक्त की भला क्या औकात है। तो सारे भक्त सब कुछ भुलाकर अपने आराध्य देव को अपने सम्मुख पाकर वो धन्य हुए हैं। काफी संख्या में यहाँ भक्त मौजूद हैं। इस बीच हमारे सामने, हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं अहमदाबाद से आई मूल अमृतसर की निवासी अंजलि जी, वो रथ यात्रा दर्शन के लिए आई हैं, हम उनसे बात करेंगे। तो अंजलि जी, स्वागत है आपका जगन्नाथपुरी में। आपको यहाँ आकर कैसा लग रहा है?
2: ये खूबसूरत नजारा आज तक मैंने कभी देखा नहीं था। इतना बड़ा त्योहार की तरह इसको मनाया जाना मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं ये देख पाऊंगी। जो इन पलों का मैं अनुभव कर रही हूँ वो मैं बता नहीं सकती शब्दों में कि इतना प्यारा अनुभव, इतना सुंदर अनुभव कैसे मुझे मिला मुझे नहीं पता। लेकिन इस समय जो मैं अनुभव महसूस कर रही हूँ वो मेरे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। हर भक्त अपने अपनी जगह से जुड़ा हुआ है और अपनी अपनी भक्ति में इतना लीन है कि उसको अपनी ना बारिश की परवाह है, ना अपनी भूख की परवाह है, ना किसी भी चीज की परवाह है, और वो वहीं पे खड़ा हुआ है भगवान के दर्शनों के लिए। इतना इतना इतना उत्सुक है कि मेरे पास शब्द नहीं है। हर इतने लाखों लोगों में सब में इतना प्यार भावना भगवान के प्रति जो मैंने देखे मैंने आज तक कभी देखी ही नहीं है।
1: धन्यवाद अंजलि जी।
0: यह रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने तक भगवान बलभद्र जी का रथ खींचा जा चुका था और देवी सुभद्रा जी के रथ को खींचने की तैयारियां चल रही थी। अभी आप सुन रहे थे

0: आज महाप्रभु जगन्नाथ जी के धाम ओडिशा के पावन क्षेत्र पुरी में आयोजित हुई रथ यात्रा पर समेकित रेडियो रिपोर्ट। आलेख एवं वाचन स्वर प्रकाश चंद्र दवे, प्रस्तुति सहयोग अक्षय कुमार सेठी, प्रस्तुतकर्ता थे विनय कुमार सामंतराय। आकाशवाणी के कटक केंद्र के सौजन्य से प्राप्त यह कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
1: ഇന്ന് ഒഡീഷയിലെ പുരി ജഗന്നാഥ ക്ഷേത്രത്തിൽ നടന്ന രഥയാത്രയുടെ റേഡിയോ റിപ്പോർട്ടാണ് നിങ്ങൾ കേട്ടത്.

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। भारत ने 1 अरब से ज्यादा लोगों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाकर एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन से देश की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। दमन और नई दिल्ली के बीच सीधी व्यावसायिक विमान सेवा शुरू। हवाई संपर्क के एक नए दौर की शुरुआत। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा में लाखों श्रद्धालु शामिल हुए। अमरीका ने उत्तरी ईरान तक हमले किए और नौसैनिक घेराबंदी तोड़ने की कोशिश कर रहे एक जहाज पर गोलीबारी की। ईरान ने जवाबी कार्रवाई की। जकार्ता में एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत ने 2 स्वर्ण और 3 रजत पदक हासिल कर लिए हैं। और कार्डिफ में भारत और मेजबान इंग्लैंड के बीच दूसरा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच जारी। और अब समाचार विस्तार से। भारत ने सामाजिक सुरक्षा कवरेज में 1 अरब का आंकड़ा पार कर लिया है। श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का सामाजिक सुरक्षा कवरेज 2026 में बढ़कर 68% से अधिक हो गया है। इससे 100 करोड़ से अधिक लोग सामाजिक सुरक्षा ढांचे के दायरे में आ गए हैं। 2015 में यह मात्र 19% था। उन्होंने कहा कि यह सबका साथ सबका विकास के प्रति मोदी सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों के बावजूद भारत ने इस साल 3,76,00,000 टन अनाज और 3,77,00,000 टन बागवानी उत्पादों की पैदावार की है। नई दिल्ली में श्री चौहान ने कहा कि वैज्ञानिक अब किसानों के साथ मिलकर काम करने के लिए सीधे खेतों में जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि खेत बचाओ अभियान के अंतर्गत 1,600 से ज्यादा वैज्ञानिक दल 728 जिलों में पहुंचे और लगभग 1 करोड़ किसानों से उन्होंने संपर्क किया। वैज्ञानिक विशेष रूप से उन जिलों में पहुंचे जिनके अलनीनो से प्रभावित होने की आशंका है। उन्होंने बताया कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने पिछले वर्ष के दौरान कई उन्नत किस्म की फसलें विकसित की हैं।
1: एक साल में 44 फसलों की 386 नई किस्में, जिनमें से 94 क्लाइमेट रिजिलिएंट है, 29 बायोफोर्टिफाइड है, ये विकसित की है। बागवानी की 117 किस्में हमने अलग अलग अलनीनो के प्रभाव के कारण और वैसे भी जो संवेदनशील जिले हैं उनके लिए आकस्मिक योजना बनाई है। आज मैं गर्व से कहता हूं आईसीएआर कृषि परिवर्तन का अग्रदूत बन चुका है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा में जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से विकसित ये रेलगाड़ी उन्नत रेलवे इंजीनियरिंग में देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। इसी के साथ भारत हाइड्रोजन रेलगाड़ियां चलाने वाले जर्मनी, जापान, चीन और अमरीका के समूह में शामिल हो जाएगा। इस रेलगाड़ी को 110 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने के लिए डिजाइन किया गया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: इस ट्रेन में कुल 10 डिब्बे हैं और इसकी शुरुआत होने से यह दुनिया की सबसे लंबी हाइड्रोजन से चलने वाली यात्री ट्रेनों में शामिल हो जाएगी। इसमें 3200 हॉर्स पावर का इंजन लगाया गया है जो इसे दुनिया की सबसे ताकतवर हाइड्रोजन ट्रेनों में से एक बनाता है। यह रेलगाड़ी हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से चलती है जो ट्रेन को चलाने के लिए हाइड्रोजन को विद्युत में परिवर्तित करती है। ग्रीन हाइड्रोजन के उपयोग से कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों से बनने वाली बिजली पर निर्भरता भी कम होगी। इससे भारत को स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन व्यवस्था विकसित करने में मदद मिलेगी। यात्रियों की सुरक्षा के लिए ट्रेन में आधुनिक बहुस्तरीय सुरक्षा प्रणाली लगाई गई है जो हाइड्रोजन रिसाव, अधिक तापमान, आग की लपटों और धुएं का तुरंत पता लगा सकती है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: चीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
2: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्र शासित प्रदेश दमन और नई दिल्ली के बीच सीधी व्यावसायिक विमान सेवा आज से शुरू हो गई। ये हवाई संपर्क के एक नए दौर की शुरुआत है। नागर विमानन मंत्री किंजरापू राममोहन नायडू ने पहली उड़ान को दमन के नमो हवाई अड्डे से रवाना किया। यह ऐतिहासिक शुरुआत प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा हाल ही में नमो हवाई अड्डे के उद्घाटन के बाद हुई है। एक रिपोर्ट।
4: केंद्र शासित प्रदेश दमन और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के बीच सीधी हवाई कनेक्टिविटी से इस क्षेत्र में पर्यटन, व्यापार और निवेश को काफी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। यात्रियों को अब लंबी सड़क या रेल यात्राओं पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, जिससे यात्रा का समय काफी कम हो जाएगा। स्थानीय प्रशासन के अनुसार जल्द ही नमो एयरपोर्ट से देश भर के अन्य प्रमुख शहरों में हवाई सेवाओं को बढ़ाने की योजना पहले से ही चल रही है। प्रवेश अड़ियचा, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
3: नागर विमानन मंत्री किंजरापू राममोहन नायडू ने आज कहा कि उड़े देश का आम नागरिक योजना के अगले चरण का उद्देश्य अगले 10 वर्षों में 120 नए गंतव्यों तक कनेक्टिविटी को बढ़ाना और 4 करोड़ लोगों को विमान यात्रा में सक्षम बनाना है। नई दिल्ली में कार्यशाला में श्री नायडू ने कहा कि सरकार हवाई टिकटों की बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने के लिए कई उपाय कर रही है।
5: एविएशन एक ऐसा इंडस्ट्री है जिसको हमें डायनेमिक फेयर प्राइसिंग के तहत हम आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि ये इंटरनेशनल प्रैक्टिस है। कनेक्टिविटी को आगे बढ़ाना है तो एयरलाइंस को वो डायनेमिक प्राइसिंग की सुविधा हमें देनी चाहिए, जो भारत में भी हम एक्सटेंड कर रहे हैं। कई जगहों पे अगर ऐसा लगता है कि फेयर्स हद से ज्यादा हो रहे हैं तो हमने पाबंदी लगाया कि ये प्राइसिंग को रेगुलेट करेंगे।
3: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज स्वदेशी प्रौद्योगिकियों को देश भर में व्यापक स्तर पर लागू करने के लिए वैज्ञानिक संस्थानों, उद्योग और राज्य सरकारों के बीच मजबूत सहयोग का आह्वान किया। डॉक्टर सिंह ने नई दिल्ली में सीएसआईआर केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान के एक वर्षीय प्लेटिनम जयंती समारोह में ये बात कही। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के शासन में तेजी से सकारात्मक बदलाव के कारण भारत वैश्विक स्तर पर एक महत्वपूर्ण स्थान पर पहुंचा है। चेन्नई में उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 से सरकारी योजनाएं देश के सुदूरतम क्षेत्रों में रहने वाले प्रत्येक नागरिक तक पहुंच रही हैं। तृणमूल कांग्रेस की एक और राज्यसभा सांसद कोयल मल्लिक ने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने उपराष्ट्रपति और राज्यसभा अध्यक्ष सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात कर अपना इस्तीफा उन्हें सौंपा। वो इस साल अप्रैल में राज्यसभा के लिए चुनी गई थीं। कोयल तृणमूल कांग्रेस की चौथी राज्यसभा सांसद हैं जिन्होंने इस्तीफा दिया है। इससे पहले सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिकबराइक ने इस्तीफा दिया था और बाद में वे भाजपा में शामिल हो गए। प्रवर्तन निदेशालय ने कथित आतंकी वित्त पोषण और अवैध घुसपैठ नेटवर्क से जुड़े एक मामले में आज पश्चिम बंगाल सहित देशभर में 13 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। एक रिपोर्ट।
6: ये मामला उत्तर प्रदेश एटीएस द्वारा रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों की भारत में अवैध घुसपैठ कराने और उनके पुनर्वास में कथित रूप से शामिल संगठित गिरोह के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी से जुड़ा है। पश्चिम बंगाल के कलिकपुर में हरौरा अल जमीयतुल इस्लामिया दारुल उलूम में तलाशी के दौरान 40 लाख रूपए नकद और सोने के सिक्के बरामद हुए। जांच के दौरान एक मजबूत वित्तीय नेटवर्क का खुलासा हुआ है जिसमें कुछ धर्मार्थ ट्रस्ट और संस्थाएं शामिल हैं। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
3: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। ओडिशा के पवित्र शहर पुरी में आज भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा निकाली गई। सुबह से लगातार बारिश के बावजूद लाखों श्रद्धालु बड़ा डंडा पर इस पवित्र दृश्य को देखने के लिए जुटे हुए थे।
7: पुरी का पवित्र शहर भक्ति के सागर में आज डूबा रहा, क्योंकि पहंडी डीजे और छेरा पहरा की पवित्र रस में पूरी होने के

0: अभियान। निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
1: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीज

0: भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के भव्य रथों के ग्रैंड रोड पर खींचने की रस्म में हिस्सा लिया। रात होने पर रथ खींचने का काम आज के लिए रोक दिया गया है और पवित्र श्री गुंडीचा मंदिर तक की दिव्य यात्रा कल फिर शुरू होगी। हालांकि श्री गुंडीचा मंदिर के पास भगदड़ जैसी घटना से उत्सव का माहौल प्रभावित हुआ, जिसमें खबर है कि एक भक्त की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। गंभीर रूप से घायलों को इलाज के लिए पास के अस्पतालों में भेजा गया है। उड़ीसा सरकार ने इस घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही उत्सव के बाकी दिनों के लिए सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के इंतजाम और कड़े कर दिए गए हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, पुरी।
1: इस बीच गुजरात, झारखंड और दिल्ली सहित देश भर में विभिन्न स्थानों पर भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा हर्षोल्लास के साथ निकाली गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जगन्नाथ रथ यात्रा के अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कच्छ के नववर्ष आषाढ़ी बीज के अवसर पर कच्छी समुदाय को शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि आषाढ़ी बीज कच्छी समुदाय की चिरस्थायी सांस्कृतिक विरासत और मजबूत भावना को दर्शाता है। सर्वोच्च न्यायालय ने सीबीएसई पाठ्यक्रम के तहत नवीं कक्षा में तीसरी भाषा शुरू करने पर चिंता जताई है और कहा है कि इससे विद्यार्थियों में तनाव बढ़ेगा। न्यायालय ने सुझाव दिया है कि इसे पांचवीं या छठी कक्षा में शुरू करना चाहिए ताकि विद्यार्थी इसे आसानी से अपना सकें। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
2: घरेलू शेयर बाजार में आज सेंसेक्स में केवल एक अंक की बढ़त हुई और ये 77,187 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 6 अंक गिरकर 24,073 पर पहुंच गया। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के विस्तृत बाजार के मिड कैप में 0.4% और स्मॉल कैप में 0.1% की गिरावट आई। वहीं अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 9 पैसे गिरकर 96.35 रुपए पर बंद हुआ।
1: अमरीका ने ईरान पर हमले और तेज कर दिए हैं। आज उत्तर में स्थित ठिकानों को निशाना बनाया गया और अमरीकी नौसैनिक नाकाबंदी तोड़ने की कोशिश कर रहे एक जहाज पर भी गोलीबारी की गई। जवाब में ईरान ने क्षेत्र में अमरीका के सहयोगी देशों को निशाना बनाते हुए मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। ईरान ने धमकी दी है कि अगर अमरीका पुलों और बिजली संयंत्रों को निशाना बनाता है तो ईरान क्षेत्रीय बुनियादी ढांचे पर व्यापक हमले कर सकता है। इंडोनेशिया के जकार्ता में भारतीय मुक्केबाजों ने एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण और 3 रजत पदक अपने नाम कर लिए हैं। अंडर 23 वर्ग में विश्वनाथ सुरेश और गंगा ने स्वर्ण और वंशज ने रजत पदक अपने नाम किया। अंडर 19 में आदित्य और शुभम राजपूत ने रजत पदक हासिल किए। कार्डिफ में दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने ताजा समाचार मिलने तक 42 ओवर में 8 विकेट पर 214 रन बना लिए हैं। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। मौसम विभाग ने अगले 7 दिनों में पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत, पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 3 से 4 दिनों तक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में तथा 22 जुलाई तक राजस्थान में भी वर्षा होने का अनुमान है। मौसम विभाग ने मछुआरों को 21 जुलाई तक दक्षिण पश्चिमी अरब सागर में और अगले 2 दिनों तक दक्षिण बंगाल की खाड़ी और आसपास के इलाकों में न जाने की सलाह दी है। और अंत में सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने 1 अरब से ज्यादा लोगों को सामाजिक सुरक्षा कवरेज के दायरे में लाकर एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन से देश की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। दमन और नई दिल्ली के बीच सीधी व्यावसायिक विमान सेवा शुरू हुई। हवाई संपर्क एक नए दौर की शुरुआत। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा में लाखों श्रद्धालु हुए शामिल। अमेरिका ने उत्तरी ईरान तक हमले किए और नौसैनिक घेराबंदी तोड़ने की कोशिश कर रहे एक जहाज पर गोलीबारी की। ईरान ने जवाबी कार्रवाई की है। जकार्ता में एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत ने 2 स्वर्ण और 3 रजत पदक हासिल कर लिए हैं। और कार्डिफ में भारत और मेजबान इंग्लैंड के बीच 2 एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच जारी है। और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: बोधक और विस्मयादिबोधक। एक एक करके हमें विशद अध्ययन करें। पहले संज्ञा की ओर चले। सुनिए, अरुण, अनामिका, केरल, ये शब्द किसकी सूचना देते हैं? हाँ, नाम की सूचना देते हैं। इस प्रकार नाम को सूचित करने वाला शब्द संज्ञा माने जाते हैं। संज्ञा के भी भेद हैं। ये शब्द सुनिए, गोपाल, कोलकाता, बाइसिकल। गोपाल एक व्यक्ति का नाम है, कोलकाता एक जगह का नाम है ना, बाइबल एक किताब का नाम है। इस प्रकार किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, गुण आदि के नाम को सूचित करने वाला शब्द है संज्ञा। इसके भी कुछ भेद हैं। जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मोहनलाल, वो एक व्यक्ति का नाम है। कंगन एक वस्तु का नाम है। कश्मीर एक स्थान का नाम है। अब आप ये शब्द सुनिए, चिड़िया, पहाड़, मानव, जानवर। ये शब्द किसकी सूचना देते हैं? चिड़िया, यहाँ कई तरह के चिड़िया आते हैं। पहाड़, यह भी ऐसा है। इस तरह एक जाति को सूचित करने वाले शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। दोस्ती, यौवन, बुराई, सुंदर, बचपन जैसे शब्दों को देखिए, ये किसी भाव या गुण की सूचना देते हैं। ऐसे शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जो शब्द किसी समूह या समुदाय का बोध कराते हैं उन्हें समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। सुनिए, सोना। सोना शब्द किस समूह की सूचना देता है? जो शब्द किसी समूह या समुदाय का बोध कराते हैं उन्हें समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। सुनिए, सेना। ये शब्द किस समूह की सूचना देता है? हाँ, सैनिकों का। उसी प्रकार टोली। टोली शब्द किसकी सूचना देती है? खिलाड़ियों का। झुंड किस प्रकार की सूचना देती है? भीड़ का। अब सुनिए, गेहूं, चावल, लोहा, चांदी जैसे शब्द किसकी सूचना देती है? हाँ, किसी धातु या पदार्थ की सूचना देती है। उन्हें द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञाएं किन किन से बनाई जाती है आप जरा सोचिए। मनुष्य जातिवाचक है ना, इससे मनुष्यदा भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है। उसी प्रकार दोस्त से दोस्ती, नेता से नेतृत्व, शिशु से शैशव आदि भाववाचक संज्ञाएं आते हैं। मीठा शब्द देखिए, वो विशेषण है ना, इससे मिठास बनाया है। बड़ा से बड़प्पन ऐसे विशेषणों से भी भाववाचक संज्ञा बनाया है। क्रिया से भी भाववाचक संज्ञा बनता है, जैसे लड़ना लड़ाई, खेलना खेल आदि। सर्वनाम से भी भाववाचक संज्ञा बनता है, सर्व सर्वस्व, पराया परायापन। अव्यय से भी भाववाचक संज्ञा बनता है, खूब खूबी, शाबाश शाबाशी। अब हम संज्ञा जानते हैं। ये वाक्य सुनिए, शालिनी आठवीं में पढ़ती है, वो 8 बजे स्कूल जाती है, उनके भाई साइकिल चलाता है। यहाँ किसके बारे में कहते हैं? हाँ, शालिनी के बारे में। पहला वाक्य शालिनी के नाम से शुरू होता है। दूसरा वाक्य कैसे शुरू होता है? हाँ, वो। तीसरे वाक्य देखिए, उनके। यहाँ शालिनी, वो एक लड़की का नाम है। दूसरे वाक्य में शालिनी के बदले किसका प्रयोग किया है? वो। इस प्रकार नाम के बदले में सूचित करने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। प्रयोग के अनुसार हिंदी में छह प्रकार के सर्वनाम है। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, जो शब्द बोलने वाला का बोध कराता है उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। उसी प्रकार सुनने वाला का बोध कराने वाले शब्दों को मध्यम पुरुष और जिसकी बात की जा रही है उसे अन्य पुरुष कहते हैं। एक उदाहरण देखिए, मैंने उससे कहा था कि वो चला गया। यहाँ मैंने बोलने वाले का सूचना देता है, उससे सुनने वाला है तो वो अन्य पुरुष है। उत्तम पुरुष सर्वनाम आप जानते हैं, मैं और हम। मध्यम पुरुष सर्वनाम है तू, तुम, आप। अन्य पुरुष वो, यह, वे, ये आदि। दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, किसी निश्चित वस्तु का बोध कराता है, जैसे यह, वो, वे, ये। तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, यहाँ किसी निश्चित वस्तु का बोध नहीं कराता है, उदाहरण कोई, कुछ। चौथा है निजवाचक सर्वनाम, कर्ता के लिए जो सर्वनाम प्रयुक्त करता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे स्वयं, अपना आदि। पांचवा है संबंधवाचक सर्वनाम, किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध कराने वाले सर्वनाम को संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे जो, सो आदि। छठा है प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनामों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे कौन, क्या, किससे आदि। लिंग, वचन और कारक के अनुसार सर्वनाम में रूपांतर आता है। अब हम विशेषण की ओर चले। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। उदाहरण देखिए, रामू सुंदर लड़का है, राधा सुंदर लड़की है, काला हाथी मीठा आम। उपरिक्त वाक्य में सुंदर, काला आदि विशेषण है, जिसकी विशेषता बताई जाए वो विशेष है। विशेषण के चार भेद हैं, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। ये सब हमें अगले कक्षा में पढ़ें। अच्छा, धन्यवाद।
1: വർണ്ണ ശബ്ദ എന്ന ഹിന്ദി വ്യാകരണ ഭാഗങ്ങളെ ആസ്പദമാക്കിയുള്ള ക്ലാസ്സാണ് ഇതുവരെ കേട്ടത്. അവതരിപ്പിച്ചത് പേട്ട ഗവൺമെന്റ് ഗേൾസ് വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ അധ്യാപിക ജാസ്മിൻ എസ്.
2: വിദ്യാഭ്യാസ രംഗം സമാപിച്ചു.